0: Extreme energy drink.
1: Benji famous Billy. क्योंकि एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग के गोप्य विवरण आ रही खाई बिले तो ही माध्यम क्या रे न्यो दे प्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल फॉर जिमो समय न्यो ठग दिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो दे प्रे विवरण री विषय बैंक दे नील फॉर जिमो न्यो ताने सतर्क ताना ठज रखा बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्या ले जन हितरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
3: जसको नाम नै पर्याप्त छ
4: दिदी बहिनी
3: दिदी बहिनी
4: दिदी बहिनी
3: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ